स्वामीनारायण भगवान ने जय गुणाधिकांत स्वामी कहू के ज्ञान सीखे ने सेवा करे ए वत्ता जाए छे। एकली सेवा करे ने एकलू ज्ञान सीखे ए वधे नहीं घटे नहीं, अने बेमाथी एक के ना करे घटी जाए।

गे सकल जन चित्ते अति चहे। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज नी जय।

अखंड सौभाग्य गणी अमारा इच्छा उरे एज प्रभु जी मारी स्मृति रहो अंतर मात मारी। श्री स्वामी नारायण भगवान नी जय अक्षर।